फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: taken from the soundtrack of Sathya. Some songs do not age. This is one of them. KK and Shan. Many, many others on the vocals. Oh, Hamdam, Suniyore. इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे की सुबह 5th अक्टूबर की सुबह शबनम साही के साथ मेरा और आपके साथ मंडे टू फ्राइडे 9 से 12 के बीच 020-8813-8040 is the number to call if you wish to win tickets of course no pressure but not just yet thank you so much Sunrise Radio पर इस घंटे का ये था Listener's Choice.
1: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
2: Hello UK वालों, Big Boss is back और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं two chance. Big Boss only on Colors.
3: Watch Big Boss 20 tonight at 9:30 PM only on Colors TV and Jio Hotstar.
0: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk. Neeti Mohan, that version of Ishq Nibhavande. Chand Mera Dil is the film. Ananya Pandey and... I've forgotten his name now. जहां भी आप सुन रहे हैं अगर तो आप उनका नाम जानते हैं व्हाट्सएप कीजिए ना गुड मॉर्निंग

मेरे माहिया तेरे प्यार का मैनू जश्न मनावण दे, सजन मैनू इश्क निभावण दे। मीना अंसारी, थैंक यू सो मच इंडीड। लक्ष एंड अनन्या पांडे, चांद मेरा दिल। मैं सोच रही हूँ मे बी आई शुड टेस्ट द माइक इन द न्यू स्टूडियो फॉर माई सिंगिंग वॉइस, शुड आई।

0: हेलो यूके गौरव, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस। बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स।
1: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।
2: ऑलराइट, शुड वी प्ले अ लिटिल गेम? ओके, लेट्स डू गेस द फिल्म। ऑलराइट, गेस द फिल्म, टेल मी व्हाट दिस इज।
3: एक्चुअली तू ना बड़ी कूल लगती है मुझे, ये कहना था। और हॉट भी कितनी है तू, कमाल कॉम्बो है ना, हॉट कूल सेम टाइम।
4: एनीथिंग एल्स?
3: हाँ, आई लव यू, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी।
4: तुम्हें दिख रहा है कि ये लोग हंस रहे हैं तुम पर?
3: सिर्फ तू दिख रही है मुझे।
2: 07925-700-272, do you recognize that bit of dialogue?
5: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by South Hole Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholetravel.co.uk.
2: No answers on my screen yet. Who's going to be my hero of the hour?

0: Bag with Bees 2 and Gurlez Akhtar coming your way. Keep it locked.
1: जब कोई अपना दुनिया से विदा होता है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आखिरी रस्मों की जिम्मेदारियां, पूरी धार्मिक रीति और भरपूर हमदर्दी के साथ फ्यूनरल कराते हैं एशियन फ्यूनरल केयर। सर्विस हॉल या इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन, स्नान या दूसरी सहूलियत, दुख की ऐसी घड़ी में कॉन्टैक्ट संजय लोधिया एट एशियन फ्यूनरल केयर, 35 कैंटन पार्क परेड कैंटन रोड और 66 मोनार्क परेड लंदन रोड मिचम। फोन 0208-909-3030 और विजिट एशियन फ्यूनरल care.com.
2: The first time you saw a red squirrel, the beautiful colours of autumn and blackberry stained fingers, a wrong step in a stream, muddy trousers and having to take them off before you get in the car. Thanks to the support of our members, the Woodland Trust protects the woods where these stories begin. Help save moments like these by joining the Woodland Trust today from just £4 a month. Visit woodlandtrust.org.uk/join.
3: This is Sunrise, the UK's biggest. Asian.